0: खनी खनी नयन कोन अनुसरई, खनी खनी वसन धुली तन भरई, खनी खनी दसन छटा छूट हास, खनी खनी अधर आगे करु बास, चौकी चले खनी खनी चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर, खनी अचर दाए खनी हुई भोर।
1: আপনি শুনছেন রেডিও বাংলানেট.com, প্রবাসী বাঙালির 24/7 অনলাইন বাংলা রেডিও স্টেশন। মন যখন নিরুদ্দেশ।